0: है मेरी हमरंग मुझको थाम ले जिंदगी से भाग कर आया हूं
1: बारिश हो रही है ये बारिश ना होती तू भी ना आती

0: बात तो सही है ना, और आज के ज़माने के हिसाब से हम हमेशा ये कहते हैं कि यहीं जीना है, यहीं मरना है और यहीं कर्मा भी है। हम कहते थे अरे हम बुरा करेंगे या अच्छा करेंगे तो ऊपर जाके हमको इसका फ़ैसला मिलेगा जब हम मर जाएंगे, बट आई गेस इट्स नॉट ट्रू। जो भी है, जैसा भी आप करते अपने ज़बान से, अपनी आदतों से, अपने हाथों से, सारा कुछ का आंसर यही है। चाहे आज आप बुरा करके आप खुश हो जाओ, नो प्रॉब्लम, बड़े ऐश कर लो अपनी ज़िंदगी में, यू नो कि अरे कर लिया, आप क्या फ़र्क पड़ता है, यू नो, और कहो कि नहीं भाई हम तो खुश है, हमारी लाइफ तो अच्छी चल रही है, तेल लेने जाए यू नो सामने वाला जिसके साथ बुरा किया है। बट ऐसा नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जो हाथों का किया और ज़बान का किया होता है ना वो कभी खाली नहीं जाता। जो अच्छा है तो अच्छा है और बुरा है तो बुरा है। एग्जैक्टली, जीना यहाँ, मरना यहाँ, और इसके सिवा जाना कहाँ। व्हाट अ सॉन्ग, और क्या फिल्म है। और राज कपूर तो आई मीन इस इज़ रिटन बाय शैली शैलेंद्र, और जो आइकॉनिक लिरिसिस्ट है शैलेंद्र उनके बेटे हैं। इनफैक्ट ट्रेजिकली जस्ट बिफोर बीइंग हॉस्पिटलाइज एंड पासिंग अवे शैलेंद्र ने ये गाना राज कपूर को दिया, साइनिंग द बॉटम ऑफ द पेज टू फाइनलाइज इट, इमेजिन। और मुकेश का एक बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग कह सकते हैं, राज कपूर की जो अंदाज है ऑन स्क्रीन एंड हिज रेंडिशन कैप्चर्स यू नो द पैथोस and philosophy of a clown, you know, who must make audience laugh at the cost of his own sorrows. ki matlab aapki life mein kuch bhi chal raha hai, main khud ek artist hu aur main cheez ke sath connect kar sakti hu kyunki main insaan bhi hu. Koi din acha hota hai, koi din bura hota hai, kuch upar niche sab kuch chalta hai zindagi mein, but ek artist ke liye kitna tough hota hai ki jaakar audience ko entertain karna, you know, if it was a regular 9-to-5 job sitting on a desk, you can still grieve, you can still do whatever you want to and be in your own mood, but jab aap ek entertainer hote hai na trust me it is not easy. What a film Lazy Lamhe pe aap hai Nilufar ke sath on East FM, Kenya's premier Asian mix.
1: East FM, Kenya's premier Asian mix. Kakamega Mambo VP, guess who is coming to your hometown? It's the East FM and Radio Africa Roadshow on 10th July. It's the roadshow that gets everyone dancing, laughing and partying all day as you meet and hang out with Radio Africa presenters. Prepare lots of ugali, turn up with your Boda Boda crew, we'll come with the entertainment. Tucheze Isikuti, it's Radio Africa Kakamega Roadshow, July 10th. This will be epic.
2: We unlocked Gava for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.

नाजी हसन एंड जोहेब हसन उनके भाई. बट नाजी हसन की अगर हम बात करें तो व्हाट एन आइकॉनिक आर्टिस्ट, यू नो, गॉन टू सून, सच एन यंग एज शी पास्ड अवे. बट कितना देखो, इतने सालों के बाद भी हम उनके गाने इंजॉय करते हैं, उनकी धुन इंजॉय करते हैं. इन गानों को कितनी बार रीमिक्स किया जाता है, रीहैश किया जाता है, और पता नहीं क्या किया. सो कहते हैं ना, लेजेंड्स विल ऑलवेज बी लेजेंड्स. एंड फॉर नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू गेस द सॉन्ग. यादों का गुलदस्ता पे एक मेरे पास बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, और इस फिल्म के तो मतलब क्या ही कहें, बहुत सारे गाने सुपर डुपर हिट हैं, बट दिस वन इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल ट्रैक बिकॉज आई लाइक द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सॉन्ग. कि उनके जो लवर हैं वो किसी वजह से, ओके, वजह मैं बाद में आपको जब फिल्म बताऊंगी तो आपको खुद पता ही चल ही जाएगा, बट ही इज़ लाइक अपसेट एंड ही डजंट वॉन्ट टू हर टू बी अपसेट विथ हिम बिकॉज ऑफ वट एवर इज़ हैपेंड विद हिम. उनको चाहिए कि वो जो उनकी लवर है वो उनके साथ ना रहें, बिकॉज जिस सिचुएशन अभी वो हैं, ही विल नॉट बी एबल टू गिव हर दैट हैप्पीनेस दैट शी डिजर्व्स. 1989 की क्लासिक फिल्म है ये, आइकॉनिक रोमांटिक ट्रैक कह सकते हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ में, शिव हरी का लिरिक्स और कंपोजिशन एंड आनंद बख्शी साहब के लिरिक्स. इनफैक्ट इट स्टैंड्स आउट इन द एंटायर एल्बम. इनफैक्ट ये जो एंटायर एल्बम थी ये फिल्म की, 10 मिलियन कॉपीज उस साल बिकी एंड द फॉलोइंग ईयर्स. आप मुझे बताओ ये कौन सा गाना है, कौन सी फिल्म है. मैं आपको एक क्लू देती हूँ, ओके. संडे मॉर्निंग है, बहुत ठंड भी है, तो चलो इस फिल्म में है श्रीदेवी. नाउ यू टेल मी विच सॉन्ग इज दैट. 36 मिनट्स past 10. लेजी लम्हे पे आप हैं निलुफर के साथ ऑन ईस्ट एफएम, केनियाज़ प्रीमियर एशियन मिक्स.

कुछ अंदाजा लगा गाना कौन सा है. आई एम श्योर आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे कहीं ना कहीं फिल्म को लेके, गाने को लेके. सो ये जो फिल्म है 1989 में आई थी, मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है ये, बिकॉज श्रीदेवी मेरी ऑल टाइम फेवरेट एक्ट्रेस है एंड आई थिंक देर इज़ नो अनदर डाउट अबाउट इट दैट शी विल ऑलवेज बी माई ऑल टाइम फेवरेट. कितनी एक्ट्रेसेस आती हैं चली जाती हैं, मुझे ऐसा नहीं है बात की भी कई एक्ट्रेसेस अच्छी लगती हैं. आई लाइक रवीना, आई लाइक मनीषा, बट श्रीदेवी इज श्रीदेवी. लाइक there is no other actress for me when it comes to Shridevi. बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, इसका एंटायर साउंड ट्रैक इतना सुपर डुपर हिट हुआ. ये फिल्म भी बहुत ही अमेजिंग है. लाइक वेन एवर यू वॉच दिस फिल्म यू नो इट्स गॉट म्यूजिक, रोमांस, लिटरली एवरीथिंग. और ये 1989 में जब रिलीज हुई सितंबर में, थर्ड हाइस्ट ग्रॉसिंग फिल्म हो गई. एनी वेज उसमें एक गाना है जहाँ पर उनके जो लवर हैं वो एक ऐसे इंसिडेंट से गुजरते हैं जहाँ पर ही इज़ फिजिकली यू नो इन टू ट्रबल, लाइक covering but he still doesn't know when he's going to be recovered. Unko nahi chahiye ki wo upset rahe unke wajah se, unki life kharab ho unke wajah se. He really loves her, so he wants her to move on with another person or be happy with another person in life because she truly deserves it. But here she's trying to understand him ki kya problem hai, matlab you know why are you behaving like this, and she sings this song for him. She yearns for that love from him, that compatibility that they had in their life before the tragic incident. वो उनको मनाने की कोशिश करती हैं कि क्यों तुम मुझसे नाराज हो, यू नो लाइक यू नो दिस इज़ ऑल अबाउट लव, आई एम हियर टू गिव यू ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू नीड. बहुत ही खूबसूरत गाना ये, तो आप मुझे बताओ कौन सा ट्रैक है. फिलहाल तो हम किशोर कुमार को सुनते हैं, वंडरफुल ट्यून. 41 minutes past 10. गुड मॉर्निंग लेजी लम्हे पे आप निलुफर के साथ ऑन ईस्ट प्रेम कैनियज प्रेमियर एशियन मिक्स, और शुड आई से cold good morning. Hi.

0: ही है, क्योंकि वक्त ही है चला जाएगा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा. एक और बड़ा अच्छा शेर है, जिंदगी की बात करते हैं कि अजीब मुकाम पे ठहरा हुआ है, अजब मुकाम पे ठहरा हुआ है काफिला जिंदगी का, सुकून ढूंढने चले थे नींद ही गवा बैठे. कोई बात, नींद की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो ही जाएगी. हम आगे बढ़ते हैं लेजी लम्हे पे. आप हैं निलुफर के साथ ऑन ईस्ट एफएम 21 मिनट्स पास 11. अ वेरी गुड मॉर्निंग. इस घंटे में भी हम क्विज खेलते हैं कि बूझो तो जाने इन अ बिट, एंड लेट्स एंजॉय सम वंडरफुल ट्यून्स. कीप इट ईस्ट एफएम.
1: A few weeks ago, we sold 100 tickets for 100 bob. Told people nothing. They trusted us anyway. Turns out, they were right too. On Saturday, July 25th, experience the Agave Affair. Curated tasting, great music, and great company. All happening at KICC. One night, bold flavors, unforgettable memories. Don't watch it on everyone's stories. Be in it. Alibad tickets are now live at ticketyetu.com. The Agave Affair.
2: Do you have a comment or complaint about East FM, one of our programs, or a segment of a program? There are a number of ways you could make a complaint or comment. You could send us an email to complaints@radioafricagroup.co.ke or call us on 0711 046 000. Your complaint will be investigated and a response sent to you within 14 days. Just remember to keep a copy of all communications between you and us. We listen to you because you listen to us. East FM.

What a lovely track, na? I think ये एक ऐसी धुन है जो you know just is a happy happy tune and Alka Yagnik's voice and उनके साथ the wonderful Kumar Sanu. All right, so it's time for you to guess the song और मैं आपको lyrics बताऊंगी. आपको मुझे बताना है ये कौन सा गाना है. It's a very soothing, slow, beautiful song and it's a very romantic track. ऐसे मौसम में romantic गाने तो बनते ही है ना. ठीक है ना. तो चलो मुझे आप बताओ कि ये कौन सा गाना है. ओके, आई एम गोना पिक अप द लिरिक्स इन बिटवीन एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक विच हैज हाउ डू आई पुट इट, इसमें अनिल कपूर है. ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी अभी दे दिया क्लू. सो लेट मी गिव यू द लिरिक्स इन बिटवीन. ठीक है. कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके. कितने गहरे हल्के शाम के रंग है छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके. लिरिक्स तो देखो कितने खूबसूरत है. नाउ एनी आइडिया विच सॉन्ग इज दिस? आई थिंक इट्स गोना बी अ लिटिल टफ टुडे फॉर यू. लिखते हैं. ठंडी में आपका दिमाग काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो एक कप गर्मा गर्म चाय पी लो. ठीक है ना.

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvinciblewiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: कि ये गाना कौन सा है, ओके कि कितने गहरे हलके शाम के रंग है छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके. आई गिव यू द क्लू दैट इट इज अनिल कपूर एंड कुमार सानू की आवाज. एंड यस, इफ यू हैव गेस्ड 1942 अ लव स्टोरी, व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म विद सम वंडरफुल कलेक्शन ऑफ म्यूजिक. सो या, दैट्स एग्जैक्टली द सॉन्ग दैट आई वाज लुकिंग फॉर. इट्स कमिंग अप नेक्स्ट ऑन ईस्ट एफएम केनियास प्रीमियर एशियन मिक्स. एंड स्टे ट्यून्ड एज वी एंजॉय दिस लास्ट song of the show today, and thank you once again for your fantastic company.

0: FM. Alauddin Qureshi, back on the airwaves of East FM with Anjuman.
1: East FM. केन्या की मुकद्दम एशियाई संगीत तरंग, आप जैसे खुशबू जैसे सुनने वालों का चहीता रेडियाई इदारा, दिन के 12:12 हुए हैं, हाजिर है ईस्ट एफएम की हर दिल अजीज शायराना दिलबराना आशिकाना अंजुमन। खिदमत गुजारी में आपकी मुसर्रतों के सौदागर अलाउद्दीन कुरैशी। कबूल फरमाइए हमारा प्यार दुआ और मुअद्दबाना सलाम। पहला हिस्सा एक सौगात शायराना, और आज ये सौगात बन के आई है आपके लिए रोमानी गजल अबशार।

नुसरत फतेह अली खां को सुनने के बाद कुछ अशार सुन दीजिए। तेवर थे बेरुखी के अंदाज दोस्ती का, तेवर थे बेरुखी के अंदाज दोस्ती का, वो अजनबी था लेकिन लगता था आशना। वो अजनबी है मगर मुझको आशना लगे, ना जाने कब मेरी दुनिया में मुस्कुराए। अब सुनिए आबिदा परवीन को।

हर आशना से उस बिन बेगाना हो रहा हूँ, हर आशना से उस बिन बेगाना हो रहा हूँ। मजलिस में शमा रौ की परवाना हो रहा हूँ, मजलिस में शमा रो की परवाना हो रहा हूँ। साकी शराब और सागर अब चाहता नहीं हूँ, साकी शराब और सागर अब चाहता नहीं हूँ। उसके ख्याल सुन मैं मस्ताना हो रहा हूँ। लीजिए अब सुनिए मेहदी हसन को।

दिल के उदास शहर की तन्हाइयों में हूँ, दिल के उदास शहर की तन्हाइयों में हूँ।

तेरे नाल दो कड़िया ने असाने हसके जी पर चौना ओ प्यार दिया दो गल्ला करके वेला लिए तक नी चुप करके चढ़ जा मित्रां दा चलिया ट्रक नी।